सफर तू बता मुझको चलना किधर है मुझको तलब खुद से मिलना किधर है जो मांगी दुआ में मन्नत यही है सच तो है दुनिया की जन्नत।

0: सच तो है दुनिया कि जन्नत यही है।
1: Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

0: के लिए खुदा भी टाल देगा, जब होगी बात बेवफाई की, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा।
1: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.

0: नफरत में तो लेना कोई
1: हिप हॉप बनी लाइफ कपड़े दिए खाना दिया फैंस के रूप में खजाना जीने के लिए जमाना दिया परायों ने प्यार अपनों ने ताना दिया मैं हिप हॉप नहीं कईयों ने दावा किया मैंने हर तरीके का गाना दिया नास के लेवल के साथ गाना किया टेल मी कितने रैपरों ने जो गाया जिया बता दो कितने रैपरों ने जो गाया जिया